0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी हुकूमत ने कुमामोतो में गुज़श्ता हफ्ते के ताकतवर जलजले से मुतासर कम्युनिटीज़ की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने हंगामी फंड से 24 बिलियन जन से ज़्यादा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मंगल के काबीना इजलास में रिजर्व फंड से तकरीबन $153 मिलियन मालियत की रकम खर्च करने की मंजूरी दी गई। आफतजदा इलाकों को फौरी तौर पर साजो सामान की फराहमी के लिए हुकूमत तकरीबन $15.2 मिलियन या कुल रकम का 10वां हिस्सा इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। इन अशिया में पीने का पानी, खुराक और पोर्टेबल एयर कूलर शामिल होंगे और मकामी हुकूमतों की जानिब से मखसूस दरख्वास्तों का इंतजार किए बगैर उन्हें खरीदा और अरसाल किया जाएगा। तकरीबन $7.6 मिलियन मकामी हुकूमतों को इनखला के लिए आर्जी रहायश गाहों की तैयारी में मदद के लिए दिए जाएंगे, जबकि बाकी मानदा लगभग $130 मिलियन मुतासर सड़कों की बहाली के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। क्यूशू एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से जलजले के बाद से बंद हैं। जापान के मौसमियाती हुक्काम ने खबरदार किया है कि जलजले से मुतासर कुमामोतो प्रीफेक्चर में लगभग अगले एक हफ्ते के दौरान मजीद शदीद जलजले आने का इम्कान है। ओकी सिटी और हिकावा टाउन में 28 जुलाई को आने वाले जलजले के इर्ताश की शिद्दत जापान के 0 से 7 के जलजला पैमा पर सबसे ज्यादा 7 रिकॉर्ड की गई थी, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर शदीद नुकसानात हुए। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने मंगल को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि झटकों की तादाद बतदरीज कम हो रही है, लेकिन जमीनी इर्ताश बदस्तूर ज्यादा है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा बालाई 5 या उससे ज्यादा की शिद्दत के झटकों का इम्कान पिछले हफ्ते के बड़े जलजले से पहले के मुकाबले 80 गुना ज्यादा है। एजेंसी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मजीद एक हफ्ते तक इस शिद्दत के झटकों के लिए चौकन्ना रहें। कुमामोतो प्रीफेक्चर में बुध को कोसा कस्बे में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.6°C, तवाना शहर में 38.3° और कुमामोतो शहर में 38.1°C रिकॉर्ड किया गया। एजेंसी लोगों से अपील कर रही है कि वो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इकदाम करें। हुक्काम का कहना है कि बहाली की कोशिशों में मसरूफ लोग वक्फे लें और गर्मी के लिए तैयार रहें। टोक्यो के शुमाल में वाके गुम्मा प्रीफेक्चर के नुमाता शहर में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें पोर्टेबल श्राइन की शक्ल एक अफसानवी मखलूक की मानिंद होती है। तकरीबन 150 खवातीन ने पीर की शाम सालाना 3 रोजा नुमाता फेस्टिवल के पहले दिन श्राइन को उठाया। इस श्राइन को सिर्फ खवातीन ही लेकर जाती हैं, जिसकी शक्ल लंबी नाक वाली अफसानवी मखलूक तेंगू के एक बड़े मास्क की मानिंद होती है। इस मास्क के सिर्फ नाक की लंबाई 3 मीटर है। खवातीन ने शहर के वस्त में परेड की और रवायती मौसीकी के साथ नारे लगाए। ख्याल किया जाता है ये अमल ले जाने वालों के लिए बायस बरकत होता है। इनमें अच्छी सेहत, पुरमन खानदानी जिंदगी और अच्छी किस्मत शामिल हैं। नुमाता शहर के मेयर होशिनो मिनोरू ने कहा कि वो चाहेंगे कि बहुत से लोग इस त्यौहार से लुत्फानंदोज हों। उन्होंने मजीद कहा कि वो इसे किसी हादसे के बगैर जबरदस्त इवेंट बनाना चाहते हैं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने मंगल को NHK से उस मुश्तरका मुदाखलत के हवाले से बात की जो अमरीका और जापान ने गुज़िश्ता हफ्ते करेंसी मार्केट में की थी। उन्होंने इसे दो तरफा इत्तेहाद की अलामत करार दिया। इन मुदाखलतों से जापानी करेंसी की कदर में फी डॉलर के हिसाब से 5 येन से जायद का इजाफा हुआ। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।